0: 哇！
1: 喂，你是大忙女人，是不是大忙？
0: 不然，
1: 不然，
0: 我是来个保安嘛，跑到处。
2: पत्ता पत्ते हो तब
0: ओए तो हेल्प करना
1: करना।

जी भी पता नहीं कि मैं वापस आऊंगा कि नहीं, बट इफ आई डोंट कम बैक दोबारा शादी मत करना।

0: Fancy wallet.
1: सफाई आइलेट सुंदर नूंचा रेडियो साइनस 89.8 मेगाहर्ट्ज़।